0: Malaysia, dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood.
1: Mom, take a chill pill.
2: Yes, ma'am. English में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है.
0: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu hanya di Zon Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: The boss.
4: Got the man with the pen right here. Bringing swagger with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me.
5: Radio Malaysia Pahang FM.
6: Ma, siapa yang nak dengar lagu Koli Boli? Bolehlah hantarkan WhatsApp kat kita 0103207488. Terus layan Pahang FM 1.5.
7: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Teresa dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood.
1: Mom, take a chill pill.
2: इंग्लिश में बोल देंगे लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है
0: जॉब दिनांकन कोली बोली setiap Sabtu hanya di Zone Inspirasi Pahang FM Koli Boli
3: Ya boss
4: Got the man with the pen right here Bringing swag with the man right here Living it up on sipping on beer
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
6: Ya, pastinya di jam yang kedua nanti pukul 10 minit malam nanti. Okay, yang mana nak hantarkan kiriman lagu-lagu ataupun gosip-gosip hangat untuk Koli Boli ataupun industri Tamil dan juga Bollywood boleh hantarkan di jam yang kedua. Anda boleh WhatsApp kami segera 010-320-7448.

0: इंग्लिश में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है।
1: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu malam hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
2: Ya boss.
3: Got the man with the plan right here. Bring it swagger with a man right here. Living up on sipping on beer. Yeah,
4: clap for me. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: take a chill pill.
1: Yes ma'am, English में बोल देंगे, लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है.
2: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu malam hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: Ya boss.
4: Get the man with the pen right here. Bring it swagger the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me.
5: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.